सैदा सैदा बल्ले आरे तो दिया गे आरे दासे गए मारी वारी तो दिया गे आरे

बरन सका महिमा जो तिहारी, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी।

अष्टपुत्र भैरव के गावहे गायन पात्र, द्वितीया माल कौशक अलाप है, संग रागनी पांचो थाप है, गोण करी अरदेव गंधा।

सरस अहिरी लै पहार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद भास्कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान ओ आहे बिनोदा गावे हैं सरस बसंत कमोदा।

गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा और कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीप

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्त स्वयं भास्वं सर्वदा सर्व जगत दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूप सदांग संगे अपनम भूते देव देखो पदन सर्वेद में आपद स्नान दुर्गोपिन सिंह जी श्री अकाल पुरख जी सहाय दरबार में तेरो दरबारा सच कण्ठ हुसैन निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा सर्व देवते करनम सकारा।

0: जय जात पात नहि सत्र मित्र जय नहि जात पात नहि जन मित्र जय नहि रूप नहि चक्र जय जन्म जात नहि परम जय जन्म जात नहि परम मेरे नहि जात पात नहि जय एक नहि मैं पितर पद जय नहि थाम नहि पट पिरा जय रूप सुख मेरे सब प्रसाद जय रूप सुख जय सात स्वाद नहि देह नाथ जय आद संत नहि रूप नाथ जय रूप सुख नहि जो रूप करा जय रात काल सुख नहि रूप जात जय तत्सत जय काल भगत जय नानक अच्छे रूप जाय भंग जय नहि देह
1: जय श्री गंगा प्रदान दो।

गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है अचिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है, नराग रंग रूप है नरोग राग रेक है, अदोग दाग दग है अभूत भ्रम भेक है, न तात्माद जात है न पाद चिहन वरण है, अदेक सेक वेक है सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है, जिमी जमान के विके सदीव करम भरम है, अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठौर में विशेख अन्न मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण न करम।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है वली अरूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है वे अंत है अनंत तेज जानिए अभूम भिज है सदा छिज तेज मानिए न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखिय अदोघ है अदाग है अच्छे प्रताप पेखिय न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को

दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद, मित्र बालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद। अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व।

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देवा खंड भूम का जले थले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देवा पार श्रीपत दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रव मान महेंद्र वेद व्यास करे कई।

हार हार थके सवे नहीं पाइये तह पार। नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कूट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पार, सोद सोद थके महासुर पायो नहि पार।

डावरूढ़ बवंके भुजा फरंके तेज बरंग लंकुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध झमके भूखण दमके अथित झमके फुंक फनंग जय जय उसी मै का सुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दाम नीत मंकण दुजा फरंकण फणी फुंकारण जोत जिते सरधार विपरखन दुष्ट प्रकार खन पुष्ट प्रहार खन दुष्ट मथे जय जय हुसी मै खा सुर मर्दन भूमा का तल उर्दे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ

संचंद प्रकाशन सूर्य प्रते जन अष्टभुजे जय जय हो श्री मह खासुर मर्दन परम विनाशन धरम दुजे गुंगुरु गमंकण।

जय किल बिग भाजे सुकूप राजे मध उरंग दुर्जन दल तजे मंथन ऋजे सवय न भजे रूह रंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन चंड चक्र धन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते

सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे। जय जय उसी मैं खासुर मर्दन विश्व विधुन संसृष्ट करे। दामनी प्रकाश है उन्तर नासे ज्योत प्रकाश है अतुल बले। दानवी प्रकार खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रदर खण पितल तले।

तादुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब भेद कहत। कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जागो प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कर।

अखंड प्रचंड पारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पारण पाय सके पद मापत भेद कते भेद उचारे। रोज ही राज बिलोक तराज करो गुरु हान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए। देव देव खपे अंग मेव न भेव रखियो भ्रम से भरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ।

लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रवह है। दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छा है। जान को दे दे अजान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है। काहे को डोलत है। तुम्हरी सुध सुंदर श्री पद्मा।

खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हु मिल गायो। भेद गते वन भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमावद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तय को मन में जय को अमित तोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निरपान सब पजहारे। भेद न पाए सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। याद अनाद अगाध बेगद वैख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरथ कोट की ए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिर कर भेष बोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के जलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्य के छलैया महा सतरण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है। कटैया जम जाल है युद्ध के जतैया।

पूर्वी न पार पव हिंगुला हिमाल दयाव गोर कर दे जी गुण गावे तेरा नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना कि देक बंध अरब के अरबी अराध तेरा नाम है। फारा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या करे दीड़ वैद लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर

विश्व को भरण है गया आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई न बार पार वार हूं को पार जगो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय का वह

0: छोड़े बादशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज
1: बोले
0: दसवें बादशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।

0: जय मात पिता सुत मीतना पाई
1: मनुआ नाम तेरा संसाय तै केवल नाम संग तेरा चले
0: जय मुश्कुर होवे अत पारी
1: हर को नाम के माए उधारे
0: पुने चरण करत नहीं तरे
1: हर को नाम को पाप पर हरे
0: गुरुमुख नाम जपो मन मेरे
1: नान पावो सुगने रे
0: सगल शिष्य को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपा सोए सुखिया
0: लाख करोड़ी बंधन परे
1: हर का नाम जपा ने सरे
0: अनिक माए रंग तिख न बुझावे
1: हर का नाम जपा तागावे
0: जय मार्गे जात केला
1: तहा नाम संग
0: ऐसा नाम मन सदा त्याइए
1: नानक गर्म प्राम गत पाइए
0: छूटत नहीं कोड़ लख बाही
1: नाम जपत है पार फराए
0: अनिक बिगंज आए।

0: भगत ले जने उबारे
1: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
0: भाजो बार को जन सो
1: वीर दया ऊपर साक्ष है
0: मुख प्याओ बैठ को
1: दे ए निर्गुण गुण कछु न बूझे
0: पकछो तो नान सिजे
1: जय प्रसाद तार ऊपर सुख बसे
0: सुत प्राग नींद बनता संग
1: जय प्रसाद पीवे शीतल जला
0: सुखदाई पवन पाव का मुला
1: जय प्रसाद भोगे सब रसा
0: सगत सामग्री संसार बसा
1: दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना
0: किसे त्याग संग रचना
1: ऐसे दो गुण अंदर

0: अंधकूप में पतित विकराल
1: नाने कालो प्रत्याल
0: करतूत पशु की मानस जाल
1: लोक पचारा करे दिन रात
0: बाहर पेखंतर मरमाया।

0: मन पछतावे।
1: जो दिशे सो चलन
0: हार बड़ा
1: जो लावे ने
0: ताको आत्मा आवे के
1: मन हर के नाम की प्री सुखदाई
0: करके पा नानक आपले लाए
1: मिथ्या तंदन कुटुंब सभाया
0: मिथ्या हो मैं ममता माया
1: मिथ्या राजो बंतन मार
0: मिथ्या काम क्रोध बिकरा
1: मिथ्या रथस्य सो बसरा।

0: जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए
1: सागर को रखमन माए
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे
1: तिसको सिमरत नाम गात पावे
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर
1: तिसे ध्याय सदा आनंद
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रत्ना।

0: साथ के संग ना कभू दावे,
1: साथ के संग सदा सुपावे,
0: साथ संग बस गोचर रहे,
1: साथो के संग अजस है,
0: साथ के संग बसे थान ऊंचे,
1: साथो के संग महल पहुंचे,
0: साथ के संग जुड़े सब तरह,
1: साथ के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साथ के संग
1: पाए नाम निदान,
0: साधो के कुर्बान, साथ के संग सब

0: सात के संग सर्व थान गम
1: नाने सात के संग सफल जन
0: सात के संग नहीं किचका
1: दर्शन भेट होत निहार
0: सात के संग करू कत हरे
1: सात के संग नरक पर हरे
0: सात के संग इया हुआ सुहेला
1: सात संग बिछ धर मेला
0: कोई इच्छे सोई फल पावे
1: सात के संग ना बिता जावे
0: और ब्रह्म सात विद बसे
1: नाने गुजरे सात सुन
0: सात के संग सुनो हर नाओ
1: सात संग हर के गुण।

0: वैष्णो सो जी सुपर सो प्रसन्न
1: बिशन की माया ते होए
0: करम कर तो वे न करम
1: तिस पैसो काल मारम
0: हम फर की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल भगत के तन सराचे
0: मंत्र अनंतर सिमरन गोपाल
1: साधो परम कृपा
0: त्रिवर नाम जपावे
1: नानक को वैष्णो ब्रह्म पावे।

0: कई कोट अपेगा तमने को
1: कई कोट पर दुर्भ को ही रे
0: कई कोट पर दुखरा करे
1: कई कोट माया श्रम माए
0: कई कोट पर देश प्रमाए
1: जित लावो तित लगना
0: नाने करते कि जाने कता रचना
1: कई कोट सिज्जती जोगी
0: कई कोट राजे सब
1: होगे कई कोट पंखी सरब उपाए
0: कई कोट पाथर बिलगने जाए
1: कई कोट पौन पानी बैसंत
0: कई कोट देश
1: मंडल कई कोट सस्यर सूर्य

0: त्रिपत्रे
1: ताल के वासी
0: कई कोट नरसुर निवासी
1: कई कोट जन्मे जीवे मरे
0: कई कोट भोजने फिरा
1: कई कोट बैठ ही खाए
0: कई कोट घाले।

0: प्रभु खोजन्ते
1: आत्मै पार ब्रह्मान्ते
0: दर्शन प्रप्यास
1: तिनको मिल्यो प्रभु बिना
0: यही कोट मांगे सत्संग
1: पार ब्रह्म ते नाकारंग
0: तो होय अब सो प्रसन्न।

0: सात्विक ऊर करो स्नान
1: साधो पाइए कुर्बान
0: सास सेवा बड़ भागी पाइए
1: सात संघा कीर्तन गाय
0: अनेक विघ्न साधु राखे
1: हर गुण गाय अमृत।

0: ठाकुर के सेवक के मन प्रती
1: ठाकुर के सेवक के निहारे
0: ठाकुर को सेवक जाने संग
1: प्रभा सेवक नाम के रंग
0: सेवक को प्रभा।

0: पेखंच ब्रह्म
1: सांजना कै दै सांत राम
0: सुनि सुवचन
1: सब व्यापी राम सर
0: गचन जत किए रे
1: सत वचन साधु
0: जो जो होए।

दंडौत बंधन निकबार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आया पर्या तो शरणाए।

अमृत छाड़ बिखै बिखाई, माया मोह भ्रम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत,

पौड़ी सेव कीती संतोखी जिनी सच सच त्याया ओनी मंदा पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित